0: This is Radio Dhorbarahi 103.8 MHz.
1: कहाँ जाने?
2: सिद्धे मोयम चिसापानी बाटा काठमांडू काठमांडू बाटा
1: मोयम चिसापानी अनि बीच में नजारने?
2: अब तो हर एक दिन बिहाना 8 बजे काठमांडू बस पार्क को लोटसे मॉल बाटा मोयम चिसापानी र यता बाटा बिहाना 8 बजे काठमांडू का लागी माइक्रो छुट्छ नि
1: ए हो र यस्तो
0: दिस इज रेडियो ढोरबाराही 103.8 MHz.

0: प्याकेटमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन के

0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 megahertz.
1: Station 1. Studio Tanchit.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301
1: Camera is standby. Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

Hello, there's something up with that. आ रही एक 10 वर्ष अन्तर्मन का आवाज मैंने आज आप तबर सही वही नशे का एपिसोड में रहे नहीं रॉक सॉन्ग लाने कार्यक्रम स्थान दिया है कल सब वने हम लोग श्रोता साथी में जो सुने और तो मनोरंजन लेना सॉन्ग नॉन इशा वन दे हम जब ठीक है 5:20

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइम अहिले साँझको 6 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301
3: 99.4 रेडियो थाहा संसार स्टुडियो टाइम
4: इट्स 6 पीएम
5: हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ यो हो थाहा संचार नेटवर्क समयको आवाज समयको आवाज

एउटा इरान चरा बुलबुल कम्युनिकेशनको रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल बुलबुल।

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98562279।
1: एक सय 103.8
2: अन्तर्मनको आवाज
3: स्टुडियो अहिले रातिको 10 बज्यो।
4: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160-95301।
5: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार
0: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथमा
6: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट
5: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार
0: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथमा
6: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौड़ा बीपी चोक
0: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461493004।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो
2: बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301